हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ

वाह, महफिल में तेरे हुस्न का, तेरे हुस्न का शोला जो भड़ के, शोला जो भड़ के, पहलू में वे फरार दिल, वे

सुनो, मेरी एक बात मानोगे? मानोगे ना? तुम्हें अंधेरे में नींद नहीं आती तो मैं रोशनी किए देती हूँ।

उजाला रेडियो दे अबे प्लस पर देश भर में सुनाई देता है, तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके, तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो। और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए, तू चाहे जहां पर जाइए, तू जान है तो उजाला रेडियो।

एक बार भगवान शिव के दोनों पुत्रों कार्तिक और गणेश जी में बहस छिड़ जाती है कि हम में से बुद्धिमान कौन है। दोनों ही अपने आप को बुद्धिमान और बड़ा बताते हैं। इसी प्रसंग को लेकर कार्तिक और गणेश जी अपने पिता शिवशंकर और माता पार्वती के पास जाते हैं। भोलेनाथ और माता पार्वती उनका प्रसंग सुनकर उन दोनों की परीक्षा लेने के लिए पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए उनसे कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जो पहले आएगा वही बुद्धिमान होगा। कार्तिक पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल जाते हैं और श्री गणेश नयन मूंद कर हाथ जोड़कर अपने माता पिता की परिक्रमा करने लगते हैं, क्योंकि माता पिता का स्थान तीनों लोकों से ऊपर बताया गया है। श्री गणेश की बुद्धिमता से भगवान शंकर प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ही जीत हुई है। तो आइए भक्तजनों, सुनते हैं भोले बाबा का ये प्यारा सा भजन।

जय शंकर जय शंकर शंकर जय शंकर कैलाशपति, जय गोरा गोरा जय गोरा माँ पार्वती। प्रिय भक्तों, सावन के महीने में शिवरात्रि के पावन अवसर पर भक्तजन लाखों की संख्या में लंबी लंबी कतारें बनाकर हरिद्वार से कांवर में गंगा जल भरकर बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव कांवर कांधे पर रखकर पैदल चलकर बम बम का जयकारा लगाते हुए शिव भोलेनाथ के द्वारे पर आते हैं। तो आइए मिलकर गुणगान करते हैं महादेव का।

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: बॉलीवुड के सबसे सुनहरे दौर को फिर से जीने के लिए तैयार हो जाइए। उजाला प्रस्तुत करता है ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड। मौसमी ओबेरॉय, शेखर कुमार, अयान मुखर्जी, बॉय के दाता दिन और निजाम वागिद हुसैन। लाइव संगीत के साथ मुंबई बीट्स, यादगार धुनें, पुरानी यादें और भावनाओं से भरी एक शानदार शाम। शनिवार 19 सितंबर को मीरवाड एम्स्टर्डम में। अपने टिकट अब

उजाला रेडियो देश भर में, तू जाने तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में हर कोना में ऑटो में घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस वन हेल नीलम तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए। तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, सुनवा लो तो दीजिए आप फरमाइश ऑफ उजाला रेडियो 15 फरमाइश 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। दिस खयाई बिनकोट रहो, तोर विवाह होने वाला है, तोर शादी होने वाला है, नेम कॉन्टैक्ट ऑफ मैट उजाला रेडियो, ईमेल info@ujala.nl 15 आवराग फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मुझे नहीं पूछनी तुमसे बीती बातें, मुकेश जी की आवाज और फिल्म अनजान राहें से गीत को आप सुने और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो का प्रोग्राम को। इन्फॉर्मेशन के लिए आप देखें वेबसाइट पर ujala.nl।

0: मुझसे क्या शिकवा, दीवाना है दीवाना।
1: तुम रूठ के मत जाना, मोहम्मद रफी साहब के साथ आप सुने आशा भोसले की आवाज। और बहुत पुरानी फिल्म 1958 के फिल्म फागुन से निकाला हुआ गीत। और अब आशा जी के साथ मुकेश जी को आप सुनेंगे।

हम दोनों मिलके कागज के दिल पे चिट्ठी लिखेंगे और जवाब आएगा, जरूर आएगा। मुकेश अंदाशा जी, फिल्म का नाम तुम्हारी कसम स्टेशन, युवाड़ो जाला रेडियो।

0: live vanuit de Hoofdstad. Ozone Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां हैं, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूडियो ईमेल नार info@ujala.nl, info@ujala.nl, 15 फ्रागे फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

धूमधाम मौसम और मस्त महीना। फिल्म उजाला का गीत आप सुने उजाला रेडियो पर, और गाने वाले मन्ना दे एंड लता जी।

मैं जाऊंगी मेरे पीछे न आना, चुरा लेना तुमको ये मौसम सुहाना। सुमन कल्याणपुर एंड मुकेश जी से आप सुने और फिल्म का नाम दिल ही तो है। उजाला रेडियो का प्रोग्राम सुनने वालों, लता जी के साथ अब आप सुनेंगे द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद साहब को।

अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे। और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

ये है उजाला रेडियो, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन यू आर। ये था आपका और हमारा साथ उजाला रेडियो पर। आने वाले दिनों में फिर मुलाकात होगी उजाला रेडियो पर।

0: आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है। उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं, 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो। स्टूडियो मेल नर info@ujala.net।
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download

लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। हाँ जी हाँ, और भी होंगे दिलदार यहाँ, लाखों दिलों की बहार यहाँ, पर ये बात कहाँ। ये बेमिसाल

0: के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा टाले हो
1: पुरानी यादों के साथ और सुंदर गीतों के संग बनती है उजाला रेडियो की प्रस्तुति

ये है उजाला रेडियो। रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।

एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान। सुनिए उजाला रेडियो पर दिल को छू जाने वाले गाने, सिर्फ उजाला रेडियो पर।

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है पैदा इसके साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। आम्स्टेल्फेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल की आयु में नीखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रो का साढ़ू भाई दरकन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा आजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लैजकंदाम में हो गई है। आम्स्टेल्फेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में नीखरन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन के मृत्यु लैजकंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने के मौका है आज शनिचर के रात में 7:30 बजे से 8:30 बजे तक। फनाफन फन हालफ अख्त हालफ नईखन ओंज जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रा 309 दनहाख में। अर्थी के दह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 4:15 बजे देश दखास्तांद क्वर्त ओफर 4 किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलन बुरख लान जीफन रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

और दविंदर सिंह सिवनाथ की आवाज में इस गीत को आप सुने सुनने वालों, उजाला रेडियो का प्रोग्राम है और प्रोग्राम का इस हिस्सा में कुछ बैठक गाना एंड कुछ लोकल गीतों, यानी कि तमाम वेस्ट इंडीज से निकाल करके पेश है

और ए दिल मुझे बता दे कि तू किस पे आ गया है। अश्नी अश्नी माता दिन, हाँ अश्नी माता दिन की आवाज में गीत को आप सुने।

और कबो कबो रतिया पहाड़ जैसे लागे, कबो कबो रतिया पहाड़ जैसे लागे। अगर रतिया पहाड़ जैसे लागे लगल तो धर ले समझ ले कि मोइलक है बतिया। एक्टवेल दविंदर सिंह से आप सुने उजाला रेडियो पर।

0: या रसिका दीन दयाल की आवाज में आप सुने। एंड तू जोन मांग तू बोल, तू जोन मांग तू सोच, हम तो मांगीला बोले दैट्स इट, हेल गुड हीव गदान, या तो
1: सेक्सी
0: एंड न्यू
1: सेक्सी
0: टू फेमस।

रात और दिन के देवे है तोर साथ, के तोर साथ सूते है, के तोर साथ जागे है, केकर साथ तू ओतो में घूमे है, और केकर साथ तोर घर के सब काम होवे है। उजाला रेडियो के साथ तो हाँ, हमेशा सुख में और दुख में उजाला रेडियो तू जान।

0: दिल को छू जाने वाले गाने सिर्फ उजाला रेडियो पर। ये है उजाला रेडियो, रात और दिन, सुबह से लेकर शाम तक, 24 घंटे सिर्फ आपके लिए।
1: Hey brother, you can do it.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Hoezana Radio.
1: अगर आपके घर पर जन्मदिन है, सालगिरह है, जो भी खुशियां है, उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है, 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो, स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो।

मैं तो तेरे वास्ते हुए पानी पानी, सरेआम ही लुट गई ये जवानी। फिल्म का बरस से निकाला गया और deze geweldige song is gezongen door Sunidhi Chauhan. En dit is de geweldige stem van Rahat Fateh Ali Khan met zijn geweldige hit Saruri Tha.

Here by Ujala Radio. और एक आध गो मोई मोई खूबसूरत गाना हम भाई का वैसे नो नहीं क्लार और सौ तरह के फिल्म दिशुम अमित मिश्रा एंड

जिक्र तेरा आयतों सा, तू लगे है राहतों सा, तू सुकून है चाहतों का बाखुदा। Geweldig mooi gezongen door Mohammed Irfan en is niet afkomstig uit de film. Nee, dit is een single song release. Ujala Radio है ये सुन वालों, जो हर जगह और हमेशा हमेशा की तरह आपका साथ है, एंड सो ओक वंदा है jouw favoriete radio, overal en altijd, waar je maar wilt. Het maakt je vrolijk, het geeft je energie. Wat zou je toch zonder moeten, hè?

0: गीत, चाहे ये जमीन ये आसमान रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे. Geweldig, mooi gezongen door Arijit Singh en Tulsi Kumar. De tekst die is geweldig en deze is afkomstig uit de film Salamat. Nee, correctie, uit de film Sarabjit. Geet genaamd haar Salamat. En dit is Mohit Chauhan.
1: क्यों रो पेंदे नैन जदों हस दे
0: मैं तो वेर एन प्राख्टिग सॉन्ग
1: दस दे
0: बस सानू आई द फिल्म इश्क दरिया

उज्जैन रेडियो है ये सुनने वालों, मैं हूं आपका सेवक अम्मी जयराम। एक बार और हम आपको स्वागत करते हैं यहां एकदम लाइव इंडायरेक्ट स्टूडियो डेन हाग से। En we hebben nog meer mooie songs hier zo op de playlist klaarstaan. Dit keer hebben we Arijit Singh samen met Shreya Ghoshal uit de film Wedding Pulau. Geweldige mooie Ghana, geweldige mooie song O Janiyar.

मून संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉरमार होने तेरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नर info@ujala.net info@ujala.net

इश्क मोहब्बत प्यार की बातें बेकार की बातें हिल का गाना है बेबी कल के सोचेंगे कल को आई फिल्म है बेबी आई 2007 Yeah, the Big O remix versie. Hey, baby, jee lene de is pal ko. Hey, baby, kal ki sochenge kal ko. दुनिया का मशहूर हिंदुस्तानी हिट रेडियो है ये सुन वालों मैं हूँ अमी जय राम एंड हिल का गाना स्पेशल फॉर यू हियर ऑफ द प्लेलिस्ट इस बार फिल्म बांकी दिल द्री से या एक फिल्म आज इस यार 2020 एक खूबसूरत सॉन्ग खूबसूरत गाना एंड इस गजोंग दो निमंत मिने दान रोशे कोली सामान में एशान

सपने सभी बंदा खोके ताले में है। खूबसूरत गाना, मैं तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, gebracht de film Kabil en gezongen door niemand minder dan Jubin Nautiaal en Palak Muchaal. De film Kabil met in de hoofdrol, ja, Hrithik Roshan. Or Sunhya Gana, groepsrit Gana, or Gana ka naam hai, Jo Muskurahat. Mr. Anu Malik Awans mein. फिल्म का नाम है द डिग्री।

हैंगओवर, तेरी यादों का, तेरी बातों का, मीत ब्रो अनजान डीजे सुमित से थी en Prince. Ja, zoveel mensen hebben gewerkt aan deze Ghana en is afkomstig uit de film Kick. Filmka naam hai Ek Hazina Thi, Ek Diwana Tha. Aur Ghana ka naam hai Huwe Bechain.

मोहब्बत में कोई आशिक क्यों बन जाता है दीवाना। फिल्म का नाम है एक हसीना थी एक दीवाना था और गाना का नाम रहा हुए बेचैन। खसोंग दोनी मदमी ने दान येसर दसाई एन पलक मुचाओ। और बढ़ते हैं ये प्रोग्राम खूबसूरत गीत के साथ और इस बार गाना का नाम है ओ साथिया। फिल्म का नाम है स्वीटी वेट्स एन आर आई और देश गाना इस सॉन्ग तो नहीं मत मिले दान अरमान मालिक एंड

कल आया था वो आज गया, और जो आज आया है वो कल जाएगा। इसी के साथ सुनिए मृत्यु समाचार।

साथ गमी है, पैदाइश के साथ मौत। उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुनिए। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते हुए मंगलवार को 79 साल की आयु में नेखन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रो का साढ़ू भाई दरकन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, ईपन बुरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन की मृत्यु लैजकंदाम में हो गई है। अम्स्टलफेन से श्रीमान हेंद्रक जियावन और बाकी परिवार बहुत दुख के साथ ये सूचना को कर रहे हैं। बीते मंगलवार को 79 साल की आयु में नेखन जीफन तखियार और सार श्रीमान हेंद्रक जियावन और 3 साली कारमेन सीला और मीला के बहनोई, रो का साढ़ू भाई लड़कन अश्विन और प्रवीण जियावन के फूफा अजमी जियावन का मौसा, ईपन बोरख का रहने वाला श्रीमान हनुमान राम खेलावन के मृत्यु लैजकंदाम में हो गई है। अर्थी से विदाई लेने की मौका है आज शनिचर के रात में 7:30 से 8:30 तक। फनाफन फन हालफ अख्त हालफ नईखन ओंज जोरख के मुर्दालय त्रिपस्त्रा 309 दनहाख में। अर्थी के दाह क्रिया आने वाले मंगलवार दिन में 4:15 देश दखास्तांद क्वर्त ओफर 4 किए जाएंगे। क्रीमाटोरियम एकलन बुरख लान जीफन रेसवेक में। सुनने वालों से निवेदन है सूचना को और आगे तक पहुंचा देने के लिए उजाला रेडियो परिवार जियावन और परिवार राम खेलावन के दुख में शामिल है।

सवा सात का वक्त है मेरे प्यारे सिनोलो तिस्कवातो रिसीव, ये उजाला रेडियो है और मैं हूँ रतन राम दुलारे पांडे। स्वागत है आप सभी को मेरे प्यारे सिनोलो। आज इस शनिवार 19 तारीख सितंबर को आज फिर एक बार मौका मिला है मेरे प्यारे सिनोलो आपका सेवा करने का। अब दसात रखावंत तो हम आप तक पेश करेंगे प्रोग्राम अब से करीबन रात्रि में 12 बजे तक सैटरडे नाइट फीवर। खूबसूरत लोकल्स के साथ आपका दिल हम बहलाएंगे। तू जाने तो वीकेंड वाइब्स, नए पुराने लोकल्स जो आज रिलीज हुए हैं, कल रिलीज हुए हैं, पिछले हफ्ते रिलीज हुए हैं और उनके साथ साथ भी कुछ पुराने लोकल्स भी सेवा में हाजिर है। एक एक निकाल कर आप तक हम पेश करेंगे मेरे प्यारे सुनो। तहरील से स्वागत करता हूं आप सभी को। एक शुभ वीकेंड, शुभ शनिवार आप सभी को हम कहते हैं। आप सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और आदाब अर्ज है। आप जहां पर भी होंगे, जिस हाल में आप होंगे, जहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, दुनिया के जिस कोने में भी आप सुन रहे होंगे, आप सभी को स्वागत करते हैं। वेलकम इन द आउटसेंडिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। मेरे प्यारे सुनो, ये प्रोग्राम के दौरान हर एक घंटे पर आप इश्तिहारे सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, मौसम का क्या हाल है और नतुलक सड़क का क्या भी हाल है, और हमारी ये प्रोग्राम के दौरान मेरे प्यारे सुनने वालों लगातार आप व्हाट्सएप के जरिए बातें कर सकते हैं मुझसे, और व्हाट्सएप का नंबर है 020-363-9000 020-363-9000 और जो लोग ये कश उठाते हैं शनिवार को हाय हेलो कहने के लिए ऐप जो करते हैं लोग शनिवार को, तो उन सभी के नाम से गीत मैं चलाता हूं। और गीत कुछ ऐसा है कि हम 8 बजे की इश्तिहारों के बाद लोगों के लिए गीत चलाता हूं, और जिस तरह से ऐप आते हैं उस तरह से हम भी गीत चलाते हैं सभी के लिए। जो पहले ऐप किए हैं उनके गीत पहले हम चलाएंगे, और टाइटल आप बिल्कुल मत कहिएगा व्हाट्सएप पर, गाने हमने चून कर चुके हैं। आप सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप एक इसी लिसनिंग सॉन्ग चाहते हैं गुसोल, या तो आप एक धमाकेदार सॉन्ग, चलता सॉन्ग आप चाहते हैं, या बैठक गाना आप चाहते हैं, हाँ ये मुमकिन है। तो मेरे प्यारे सुनो लो 020-363-9000 020-363-9008 पर आप अवश्य अभी से ऐप करना शुरू कर दे। और रहे आपके कामकाज के लिए मेरे प्यारे सुनो वालों, आपकी फरमाइश, जरूरी खबरें, मौत की खबरें, जो भी जानकारी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त करना चाहोगे, धन का रत्न तुलको फियोंस वेबसाइट, दून वेबसाइट पर जाइए www.ujala.nl। और किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर आपको हुए है तो आप सोमवार से शनिवार सुबह में 10 बजे शाम में 3 बजे तार के जरिए भी अपना काम काज दिलवा सकते हैं। फन मांडक तो तुम्हें सात रख, फन ऑफ मॉर्निंग्स 3 तो तीन में रख 3 020-409-0807 020-409-0807 या तो लगातार आप मेल करें आपके कामकाज के लिए जानकारी इंफॉर्मेशन के वास्ते, और बेहतर होगा, क्योंकि किसी भी दिन किसी भी पल किसी भी वक्त आप उजाला रेडियो को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं info@ujala.nl info@ujala.nl। और भी बकबक करना है आपसे, लेकिन फिलहाल हम आपको ले चलते हैं आज का ओपनिंग सिलेक्शन की ओर मेरे प्यारे सुनने वालों। Enjoy your weekend, enjoy Saturday Night Fever, and enjoy Aapika Manchaha, our favorite station, Ujala Radio.

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सिनेमा वालों, मैशअप आप सभी ने सुना है, एक नौता मैशअप है और ये था द गुड वाइब्स मेरे प्यारे सिनेमा वालों, हमारे प्रिय सूरीनाम का। चार मिनट बाकी है मेरे प्यारे सिनेमा वालों, सरे 7 बजने में आप ही का मनचाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। वीकेंड है मेरे प्यारे सिनेमा वालों, मौसम का हाल तो बहुत खूबसूरत तो है नहीं, काफी हवा है, बारिश भी हो रहे हैं और थोड़ा सा ठंड भी है। हालांकि मैं आज आम्स्टरडम में था और लगभग कोई 20-21 खराब था और मुझे तो ठंड तो नहीं लगा। हाँ, हवा था तेज दातवेल और अभी तक हवा मैं देख रहा हूँ बाहर, ये पेड़ जो है यूं यूं यूं जा रहे हैं, नाच रहे हैं। मेरे प्यारे सुनो, आप सभी को रतन का फिर एक बार प्यार भरा नमस्कार और अरापर्स हैं। सैटरडे नाइट फीवर फिर एक बार 5 घंटे आपका सेवा हम करेंगे रात्रि में 12 बजे तक। और एक गीत हमने चलाया आज का ओपनिंग सिलेक्शन और उस गीत के दौरान

चलाएंगे प्लेलिस्ट से निकालकर। तो आप ही चाहते हैं तन मुझे ऐप ना 020-363-0000। मैं देखता हूँ रोहित और रायन और ये है सरनाम का भी एक फॉर्मेशन द स्टार्स और एक पगड़ी मिक्स है। चलो सुनते हैं ये कैसा पगड़ी मिक्स है, मिलकर हम सुनते हैं।

हुड्डी गनवा दोन होइगे। वही हम भीरल बाती इतना काम से और अब भी हम शुरू कर ली। सबसे पहले हम हरदम तुम लोगों से बोले ला कि इतना ढेर कंप्यूटर हमारा आगे है, व्हाट्सएप है हुआ हुकुआ में, तो कमर्शियल पे इसे हुआ है हूँ हमार हुआ स्कॉइंस, जो हमें चाहिए ऐसे स्कॉइंस ताकि के तू जाने। एक वा कहती है न्यूज चैनल माया न्यूज हम बहना तो लोगों के ना बताएला तेन शायद एरख कुछ है वहां ऑन दी आवर आप सुन रहे हैं न्यूज दन फिने क्या दन खाइक दिंग इसनी तरह हाल आपको बोर नहीं करेंगे। वन न्यूज इज ओक हिल फैक आलते इट्स फैक स्लेक्ट न्यूज है तू जे ये पढ़े थे टेक्स और तुझे ये न्यूज था कि जो एक से दुखी चीत हो वही सब बतावे मोई मोई चीत कभी सपना बताए जो सदु एक धारम हिल वैनिक इन टेनिस में आउटस्टैंडिंग मार इस वेल एक मुतर वेल ऑफ लेटर वंत तू ना जान सके अब बोली फान देखो पुतिन यहाँ आए गए हैं पहुंच गए हैं यहाँ रोटरडैम के सेंट्रल स्टेशन पे याद अन मुतिक वेल ना तू लग तू लोग बतावे परी जूता उता हल्दी पहने चाहिए हम लोगों के धौरे परी तू जाने है तो मफलोपक हम पढ़ीला कि उना आयल है और हम ना सोचिला बेउआई जो जूतवा ना पहन ब्लाइफ वार ये बैन लेकर वारम मेरे प्यारे सुनने वालों एंजॉय योर वीकेंड। उम्मीद और आशा करते कि कुछ चटक मटक आपने खाए हो बनाए हैं और खा रहे हैं होंगे दोस्तों हिती प्रेमियों के साथ शायद आप हो मजा ले रहे हैं आप एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। नाउ मैंने भी मेरे प्यारे सुनने वालों हमने भी भरपूर एंजॉय किए हैं बस हियर लेके नाम से दाम मुझे जाना पड़ता है इतना रोटरडैम से एकदम अम्स्टरडैम जाना पड़ता है सो क्योंकि मुझे अम्स्टरडैम भी बहुत पसंद है और नेचुरली मेरी बेटी भी वहाँ रहती है और उजाला के कुछ कारोबार है वहाँ जो देखना है एंड नेचुरली तुलों ना गए ले वो तुलों हम में बैठ के सुने हैं घरे माँ एहलक आज शो है टियाटर द मेरफाट में और शुरू हो अब ना भैल है जो तुम आगे जूता पहने तो देख पुटिन खटना माँ तू दौड़ दौड़ के जा सके है मेरफाट वन शो 8 बजे शुरू हुई थोड़ा सो दौड़ के जाइए हम न जाने की काटता है कि ना पहले वो चीज वहाँ टाक लिए तब जूता पहन के दौड़ के चल जाइए ठीक है। मार द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड आज कॉन्सर्ट है जो जलारी जो रचाए हैं थिएटर द मेरफाट में जिसमें 30 आइकॉनिक आवाजें आप सुनेंगे वो एक सफर में आपको ले चलेंगे बॉलीवुड का डाउन द मेमोरी लेन और मौसमी उबड़ॉय शिखर कुमार अयान मुखर्जी बॉयक मेरे छोटा भाई बॉयक डाटा दिन एंड नेचुरली निजाम वागिद हुसैन गाना गाएंगे और ओनर बखलाइडिंग फन मुंबई बीट्स बोई तो काटता ना किले तो किस पैट हुई वन फोकस में काटता ना बच सके है उजाला रेडियो के कॉन्सर्ट हरदम uitverkocht kocher है en zeker nu bedoel begint straks over 20 minuten. Maar toen mange koosjes kreeg, ham toch geen haar ook op, ja? Mijn pijre zijn al, heb ik wel over heen, kie 020-363-0808. Behoud zijn de logo nee, heb kie. Or, ja, als je nu gaat appen naar de studio op 020-363-0808, zo snel gaat dat altijd, dan zit je in het blok van 9 tot 10. Ik heb door gaat gana zeker hem draaien op. Geen ga geen titel zeggen omdat ik koi titels hem betalen hè. Us hem ganwan hamar lage site na hoit tu niraash ho jaiye. Dus hamme tu titel na boliye ki ee draai kariye u draai kariye joon hamar paas hai bhaiya. Wohi hum draai karab. Bura na maniye. Tu jaane to. Je mag wel aangeven of je een snelle nummer wil.
बैफ बोलतन चलता नगमान बैठक चटनी तू जाने तो Of misschien wil je een rustige nummer zo? Dat mag je wel zeggen. Meer niet. Chili tani trinidad gumi. Amle jala tlonke. Chili.

या। नीलू एंड आइवन मेरे प्यारे सुनो लो, बहुत खूबसूरत हो मेरे प्यारे सुनो लो। चेक ऑन सोशल्स, फेसबुक, टिकटॉक और उजाला रेडियो का जो इंस्टाग्राम पाखिना है, हमसे जुड़ जाइए, हमारे दोस्त बन जाइए। गेट कनेक्टेड टू उजाला रेडियो, तरह तरह की सूचनाएं जो हम छापते हैं वहां पर मेरे प्यारे सुनने वालों, आसानी से आप पढ़ पाओगे, अपना कमेंट्स दे पाओगे, किसी को टैग कर सकोगे। ये कहना तेल एंड नटूलक तू कुंची कुंची ना कर सके, हम भी ना जानेला। और एक जने ने पूछा कि मैं क्या खा रहा हूं। वेल खाई एलक से है एक वासे नाम सदाम, तो तू जाने आज हमें मिसाल हम पकाया ला, बाकी आज हमें से ना रहा, झूठ ना बोल। हम जाए के हमें गो नासी और का नाम है हालफ हालफ रहा पेकिंग इंट बिना बोत और का नाम है खरूस केप वाला, ऐसे कुछ चीज हम कीन ले ली, तनी से खा ले ली बस वही। और यहाँ स्टूडियो के जो कुकन है वहां पर कुछ मसालेदार चीज हम सुंग ही ला। एक वीट हुआ था तेस मैं खाई रही नौकरी फिर तेल हुआ था तेस पहले के जब हमें मिली वो ना तेस नौकरी फ्रांक कि हमें मिली कि ना वन कापर्स बहुत ढेर है आज स्टूडियो हुआ में। हमें मिली हमें मोई लगी तब हम तुम लोगों के बताबे कि कौन ची बने हैं मसालेदार। एक बैठक हो जाए मेरे प्यारे से नॉलो अतिस वीकेंड एंड दान होटल बॉय बैठक बाय एंड नटूलक यंग टैलेंट फंड हीरा ब्रदर्स

विशाल हीरा मेरे प्यारे सुनो आलो मैंने फरमाती द हीरा ब्रदर्स आउटहोफ्डोर्प आना पवन कुमार। कई बार कह चुका हूँ मेरे प्यारे सुनो आलो इट इज सो नाइस कि ये छोटे छोटे हमारे जो सूरीनाम का बच्चे हैं बैठक गाना को इतनी पॉपुलर कर दिया है और ये बैठक गाना जो है हमारे भी कल्चर का एक हिस्सा है और ये लोग इतने जोश से उसमें भिरे हैं गाना गा रहे हैं यादवेनिक अलीम अब्लाई एंत्रोत्सुप पावर फोर्स आलमाओ डिफरमासी जेंटल की ओर आपको ले चलेंगे मेरे प्यारे सुनो। लेकिन गीत चलाने से पहले ये भी मैं बता दूं दिस हैव अ सोफिल मेंसा अल ऐप आल्स यू न्यू गाट ऐप डन सिट यू इन इट ब्लॉक के फन 10 टोट 11 तो जाने तो हम 8 बजे के बाद शुरू करब 8 टोट 9 इज फुल 9 टोट 10 इज फुल दिस टू ऐप करिए अब द तोर गाना तो के देरी से अगोरिक परी वन टगनवा हम ड्राई करब तुसे 10 एन 11 यूर एन दैट हंग्ड ओक वेर फनाफ कि कितना स्नेल तू ऐप करे हैं आज मां ब्लेव वाखते दन वर्ट इट मिस्किन ना 11 मिस्टर ट्रेबल

Yeah, the latest chutney mix by Treble and formatsi Gentle mere pyare sinwalo here on you are. आप तक हमने पेश किया है. हर एक हफ्ता हम स्क्रीनिंग करते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों की क्या निकला है क्या नहीं. ओक ऑफ द डक सेल्फ जबकि हम प्रोग्राम सजाते हैं. एंड द डुएक नाचू लिखनी था लेन दार है पिक एंड क्लेन 3-4 एंड या सोम से तथ हिल फिल बहुत ज्यादा हो जाते हैं आपको सुना नहीं पा रहे हैं. एक आखिरी गीत मेरे प्यारे सुनने वालों और इस गीत के बाद ब्रेक होंगे 8 बजे का और ब्रेक के उस पार नाओमी थी

झूमो नाचो दिन है यही, पीले भी और जीले भी, दो दिन की है ये जिंदगी, दो दिन की है ये खुशी। एंड दैट इज वार, मेरे प्यारे सुनने वालों, बहुत सारे दुखों का सामना हमें करना पड़ता है इस जीवन में, और सुख का जो पल है वो है क्षण। दैट इज हील वैन सो खनी तरफान नींग मरफान एंजॉय बी पॉजिटिव ऑलवेज। 11 मिनट गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों, 8 बजकर आप ही का मन चाहा और फेवरेट स्टेशन उजाला रेडियो है ये। मैं हूं आपका यारों का यार रतन राम दुलारे पांडे, और सैटरडे नाइट फीवर फिर एक बार सेवा में हम पेश कर रहे हैं। पहला घंटा में था नगमाई जो हमने आप तक पेश किया है, कुछ धमाकेदार अपने ही चॉइस का, और अब से हम लिस्ट पर जो नाम लिखा गया है एपर्स का, अब फॉलो हो दफा बेन को मंद एपियस नाम लिखा गया है, और उसके हिसाब से गीत हम चलाएंगे सभी के लिए। आप ही ऐप करना चाहोगे तो ये मुमकिन है 020-363-9000 पर आप अवश्य ऐप कर सकते हैं। लेकिन आपको मालूम रहे, एंड दैट गेल्ड फॉर इदरेन, हैव गेडुल्ड, आपका गीत हम जरूर से जरूर चलाएंगे, लेकिन हैव गेडुल्ड, वांट दैट कैन सम्स इवेंचस ड्यूर। और जो लोग अभी ऐप करेंगे, आपके नगमा शायद 10 बजे के बाद हम चला पाएंगे। Beware of that fact. एंड आलक हम तुम लोगों से बताबे कि हम कौन सी खेली छा। वांट एक मोहाल प्रूफ कि मर्चुआ ठीक है, निमकुआ ठीक है, ई ठीक है तो ऊ ठीक है। अब भी बताबे तुम लोगों से। आइलिन जी, आइटालम आइलिन जी, आपका ऐप आया है, और हमेशा जब भी आप चुन की ये करते हैं आइलिन जी, dann mache ich ein mooie liefe Appje von jou empfangen. Uske liye dil se dhanyabad. Dankjewel for your support. Aur aap bharpoor enjoy kare apna shanivar, apna weekend. Ramon Lachman ka gaya hua ek bahut purana nagma. Main Aileen ke naam karta hoon, Ait Harlem.

रामोन लक्ष्मण की आवाज मेरे प्यारे से नालो हेलास नी मेरोन रोंस खदल दख सांगर ये था फ्रॉम द एल्बम पार्टी टाइम रहने है रहना है तेरे साथ लेकिन छोड़ दे तू पीना शराब या मैं अति से खनोट में दल ये जो शराब है अति से खनोट में खनीतर फन मा आलस मत मात लेकिन बहुत शराब पीने से जो बात गड़बड़ाई गए हिलफुल मैन से वह अख्तराफ स्पैट एंड दैट इज टूट एंड दूध सोन जो भी आप करेंगे सभी मत मात तो और अच्छा होंगे मैं यूफ नहीं था मैं तो लॉयस्टर हूं मेरे प्यारे सुनो अगले गीत की ओर हम आपको ले चलते हैं जो अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं अपना शनिवार एंजॉय कर रहे हैं और ट्यून किए हुए हैं उजाला रेडियो पर रतनाम का राकेश और नताशा तो डंक्यूलिवेल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ने एप किए हैं ये कहकर कि आप एंजॉय कर रहे हैं प्रोग्राम से मजा आप ले रहे हैं तो नताशा जी और राकेश जी रतनाम ये नगमा आप दोनों के नाम

रे बाप रे हर्मेस, ये चटनी मिक्स जो है रोहित छेदी मैंने फरमाया सी द स्टार्स मेरे प्यारे सुनने वालों, जैसे हर्मेस तो के इतना बवेख कर एक परी जैसे तोड़ दे ही कि स्ट्रो मार दे, मेरे प्यारे सुनो हर एक इंफॉर्मेशन के लिए, हर एक इंफॉर्मेशन के लिए चेक www.ujala.nl। तो मेरे प्यारे सुनो जो चटक मटक बना और जो हमने चीखा अथवा खुतूर, मुझे ऐसा सिर्फ लगा कि थोड़ा सा मिर्च उनमें कमती था, मार था तुम हार्ड किप लेकर मसाला में। और आज बहुत खुशहाल है स्टूडियो में मेरे प्यारे सुनने वालों, कुछ दोस्तों हैं हमारे प्रिय भाई लोग हैं जो मजा भी ले रहे हैं, और ये लोग इनको भूख लगे हैं एंड इसी ओंस हाउ डिफन चटक मटक एंड इट इज हार्ड किप, हार्ड किप इन मसाला लेकर लेकर। dus hopelijk krijg ik zo ook een kobaatje. anders probleem rahi hum khali na sung sakila to. Scheveningen shahar mein Lakshman ji rehta hai aur wahan se Lakshman ji ka app hamesha aata hai. भैया लक्ष्मण जी thank you well आपके ऐप के लिए, आप एंजॉय करें उजाला रेडियो अपना वीकेंड। अगले गीत मैं आपके नाम चलाता हूँ भैया लक्ष्मण जी, इट्स इवनिंग, और आप तो जानते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे दिलों में है, एंजॉय।

in Hallo. En het is 3 minuten over de klok van 8:30, mijn lieve is in Hallo. Sorry, 8:03 gezet je kent, jij hebt je maar op agle geet ke oor. गीत हम नाम करेंगे आम्स्टरडम का जो रहने वाली है कैटरीना डंकीवाल कैटरीना फॉर ये एपियर खनित फॉर ये सैटरडे आवेंड एंजॉय योर वीकेंड एंजॉय यू आर एंड एंजॉय ये नगमा जो कैटरीना के नाम करता हूँ आउट आम्स्टरडम

कभी पलकों पे आंसू हैं तो कभी दिल पे शिकायत है, मगर ऐ जिंदगी मुझे फिर भी तुझसे मोहब्बत है। शिखर कुमार की आवाज मेरे प्यारे

दिल ने ये कहा है दिल से कि मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो। प्रख्तख खमाक मेरे प्यारे सलानो, बहुत खूबसूरत ये गीत फिर सजाया गया है आप तक, हमने पेश किया है हीरो निवार से तेरे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, एंड एक है बखरीप फरनूम की दीपिका पादुकोण, एक्ट्रेस है बॉलीवुड का जो है खतरात में रणवीर सिंह, उनको फिन दोनों को बच्चा हुआ है अन डॉक्टर जो सच इज द ट्वीट। बधाइयां शुभकामना तो दीपिका एंड रणवीर। हम आपको ले चलते हैं मेरे प्यारे सुनने वालों वखानार आम्स्टरडम। आम्स्टरडम में सुन रहे हैं मेरा एक बहुत अजीज छोटा भाई, मेरा यार रफास नन्हे खान, और ये चिल नहीं कर रहे हैं, काम कर रहे हैं इस वक्त अपने घर में, क्योंकि घर का काम कभी खत्म नहीं होता। There is always something to do in home. Rafas werkt niet te hard, het is ook weekend. En het wordt al bijna 9 uur. Dus je moet ook een beetje gaan chillen. Oh Rafas, ik ben zo blij met je appje vandaag. Ik heb een nummer opgezet, zoals jij die ook kon zingen. Je mag ervan genieten. En dankjewel, we spreken elkaar weer gauw.

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सुनने वालों, वीरेश की आवाज, मुसाफिर हूँ यारो, और उससे पहले मेरी भीगी भीगी सी, रिमेम्बर दिस इज यूआर, मेरे प्यारे सुनने वालों। और तुरंत आपको ले चलेंगे अगले गीत की ओर, एक चटनी मैशअप शनील नन्हू जी का, एंड दैट इज फॉर यही रोहतांग शहर का भैया जॉनी कालीचरण जी, जो हमेशा चून किए करते हैं। तो भैया जॉनी चाली कालीचरण जी के लिए हम कहेंगे कि बहुत बहुत धन्यवाद जॉनी कालीचरण जी, आपके ऐप के लिए, चून करने के लिए। एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर सैटरडे, एंजॉय यू आर, और खास करके भैया जॉनी जी, एंजॉय दिस सॉन्ग।

ये आवारापन ढेर लग जाए फ्री मिक्स मेरे प्यारे सिनोलो सेवा में। 9:08 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सिनोलो। शनिवार है अभी, इट इज वीकेंड। उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी भी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं अपना वीकेंड। चा अन उन्स हियर बाय यू आर सलत निकली है आपके घरों में, द वीकेंड वाइब्स पेश हो रहे हैं। सैटरडे नाइट फीवर विद द ब्यूटीफुल लोकल्स, मेरे प्यारे सुनने वालों, आपके घरों में उजाला ही उजाला लाने के लिए। लेकिन घरों में नहीं, आप जहां पर भी होंगे, मतलब ये कि आपके दिलों में उजाला ही उजाला हम लाने की कोशिश कर रहे हैं। 02 स्टूडियो का व्हाट्सएप है, और अभी तक आपको मौका दिया जा रहा है ऐप करने के लिए। मारे एपर्स मुतवल बसेफ है कि आप 10 बजे के बाद आपके लिए हम गीत चला पाएंगे। एंड मिस हिनवेल नोह लादर अति संबीच दुर्क। अश्विन ने ऐप किया है, एंड अश्विन हाथ वत टिटल्स दूर गेव। अश्विन, सो वर्कट इट नीट ऑफ सैटरडेआवंड। नगमाओं का चॉइस मैं करता हूं, और जो मेरे पास है उसी में से निकाल कर आप तक पेश करेंगे। सो आई होप यू डोंट माइंड। एंड अश्विन सेग फॉर माइन फ्राउ, ये हैव हर नाम नीट गेनोम। एंड अश्विन, ये हैव नीट गेसेग तू कहां से ऐप कर ले, बट दैट मेक नी आउट, आप जहां से भी ऐप कर ले अश्विन, मैं ब्लै रच आप खस्तम बिन, आप भरपूर एंजॉय करें। एक नगमा, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स हमारे हॉलैंड के अंदर, सागर मालिक की आवाज में, नाम अश्विन फोर्सन फ्राउ।

ब्यूटीफुल मेरे प्यारे जनों वालों, इन हवाओं ने या इन हवाओं में किसी ने लिख दी दो दिलों की कहानी, एक तेरा है और एक मेरा है। सागर मालिक मेरे प्यारे जनों वालों, इनकी खूबसूरत आवाज में खूबसूरत गीत पेश हुआ है। मेरे प्यारे जनों वालों, फोलगंड वीक जो नए हफ्ता होंगे, dan bent u gewend dat ik er woensdag, donderdag en zaterdag ben. Woensdag met Back to the Future. Donderdag met Dilke Awaas. Or Saniwar, je programma lekker Saturday Night Fever. Lekin baat goed eisen hek je agle hafte 23 september. Kisi majboori ki wajah se mein programma nahi bana paayenge Back to the Future. Dus woensdagavond, dan ben ik er niet met programma Back to the Future. Donderdag wel, 24. Ko aarte baje, seratri me gyara baje, peeskeringe dilkia was. En zaterdag de laatste van september, 26 tarik ko bhi seva karne chale aayenge. लेकिन फिलहाल हम Den Haag की ओर जाते हैं, जहां पर मिक चून किए हुए हैं। तो डंक यू वेल लीफ मिक जी आपके ऐप के लिए, एंड नेचुरली बडंग फॉर योर सपोर्ट और चून करने के लिए हमेशा मिक दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। डंक यू वेल द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागित हुसैन, इनका गाया हुआ एक नगमा मिका के नाम है Den Haag।

प्यार कर लिया तो क्या प्यार है खता नहीं, और तेरी मेरी उम्र में किसने ये किया नहीं, सभी ने किया है। द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमरवागी तो सैन की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों। हम टर्नआउट की ओर बढ़ चलते हैं। टर्नआउट में सुनीता और बेटी खुशी रहती है। थैंक यू लिवेल सुनीता एंड खुशी टर्नआउट आपके ऐप के लिए। एक है अपन मोयो नंबर खसुंग डोर द टाइगर ऑफ बंगाल कुमार सानू में द फॉर्मेशन द इंडियन टेम्पटेशंस। लेकर मोयो स्विंगन नंबर सुनीता जी के लिए और खुशी के लिए टर्नआउट।

आओ हम प्यार करिए। कुमार सानू विद इंडियन टेम्पटेशंस। मेरे प्यारे सुनने वालों, सेवा में जो हमने पेश किया है, मैं घड़ी की तरफ देखूं तो मेरे प्यारे सुनने वालों 3 मिनट बाकी हैं, और वो भी 9:30 बजने में, 3 मिनट to 4 o'clock फन हाल्फ 3, और ले चलेंगे अगले गीत की ओर जो हम पेश करेंगे अपने बड़े भाई के लिए। मेरे बड़े भाई राजेश छुटकन भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं खौड़ा शहर में। तो फैन बेंत जिन एक गीत हमने तैयार करके रखा है मुक्का सिंह की आवाज में, वन ऑफ द फाइनेस्ट सिंगर्स फन ऑफ मासी एक्सप्रेस, इनका गाया हुआ एक नगमा फॉर माई बिग ब्रदर राजेश छुटकन आयत खौड़ा। एंजॉय दिस सॉन्ग, enjoy your weekend and enjoy your Saturday night fever.

कुछ लोग प्रोग्राम नहीं सुन रहे हैं, दिस इज नॉट अ कॉन्सर्ट, लेकिन उन्हें मालूम है कि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। कुछ लोग फ्रांसी से हैं और उनकी जो इंटरनेट गड़बड़ा है तो वो भी ऐप करने लगते हैं कि अरे सॉरी कानी नए प्रोग्राम माँ के खेल सोर्ख भैया, तू भरपूर एंजॉय करे, आप जो भी करेंगे एंजॉय। Ik ben blij dat jullie nog aan mij denken. Mag niet. Er is meer dan alleen Saturday Night Fever, toch? कभी कभी हो जाता है तो आप करें वो जो आपको करना चाहिए। एम्मा के खेस और नीमान तेज बोस इधर ही बखरेत आईफी जहांगीर uit Amsterdam. आईफी जहांगीर, ik kan me niet voorstellen dat Ivy mij niet gesupport heeft. Ja, het kan misschien. Ivy was ziek of wat dan ook. Wat eigenlijk in meestal Ivy ke app hameshata. Dankjewel Ivy. Aap ke app ke lie. Bahut bahut shukriya. Geniet van je weekend. Stephen Baitali, inka gaya hua ek nagma Ivy ke naam karta hoon. Enjoy, Ivy. Enjoy.

आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करती हो। खूबसूरत गीत जो फिर से गाया और सजाया गया है स्टीफन बैतली जी के जरिए और आप तक हमने पेश किया है। स्टीफन बैतली संगण फंड फरमासी एतम सिदम रेसलेस। मेरे प्यारे सुनोलो, 10 मिनट गुजर चुके हैं 9:15 और अगले गीत होफ डॉरप शहर का जो रहने वाले हैं जॉय और रिश्मा सुखू। थैंक यू लिवेल भैया जॉय सुखू जी एन रिश्मा जी चून करने के लिए आपके ऐप के लिए। आप भरपूर एंजॉय करें उजाला रेडियो और खास करके प्रणाम सैटरडे नाइट फीवर मारना तुलकोक। आप भरपूर एंजॉय करें अपना वीकेंड अपना शनिवार। अगले गीत जो द किंग ऑफ हिंदी पॉप उमर वागीर हुसैन गाएंगे जॉय सुखू और रेशमा जी के लिए आई होप टू।

द किंग ऑफ हिंदी पॉप मेरे प्यारे सुनो उमर वागी तुसे की आवाज। अगले गीत आपल दोरन की ओर हम आपको ले चलेंगे, वहां पर सफूरा सुबराती रहती है। तो सफूरा जी भी अपनी ताल तय, लेकिन सफूरा जी हमेशा प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, उजाला रेडियो से जुड़े हुए हैं, उसके लिए दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेल सफूरा जी। आयुत आपल दोरन फनाफ बखिन पवरिया सुई सो मैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद। ये नगमा सफूरा जी आपके नाम करता हूं।

या धमाकेदार चटनी मिक्स मेरे प्यारे से नॉलो द म्यूजिक बैंड फ्लेवर मेरे प्यारे सुनो ये उजाला रेडियो है जिस पर अभी तक आप ट्यून किए हुए हैं। मैं हूं आपका यारो का यार चंद्रम लाड़े पांडे और वक्त स्टूडियो टाइट 11 मिनट ओवर द क्लॉक फन 10:11 गुजर चुके हैं मेरे प्यारे सुनने वालों और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे और आखिरी घंटे में दैट इज फन 11 to 12 खवाली महसूस राय कुछ नाम है और हमारी लिस्ट पर 5-6 नाम और है जिनके साथ साथ ये घंटे में हम नगमाएं चलाएंगे उनके लिए मार फोर लास्ट ब्लॉक मखिया नटूरलक आप ऐप कर सकते हैं 02-33-03-09-09 जब हम बोलब हो स्टॉप तब तो स्टॉप करिए। मैं स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह जी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं और वो भी सुतमेर शहर में और ये स्वागरी जी हमेशा सपोर्ट करते हैं तो उनकी सपोर्ट उनकी प्यार के लिए बहुत बहुत डंकी वेल स्वाग। एक गीत हमने तैयार करके रखा है गुड वाइब्स फ्रॉम सूरीनाम सुम्स ऑफ एन टू गीत का टाइटल है फॉर माय स्वागरी हंस लक्ष्मण सिंह आयत सु

ओ प्रीतम प्यारे तू कहाँ बसते है, मोरे नगरिया दिखा जा। डिफरमेंसी गुड वाइब्स मेरे प्यारे सुनने वालों, मिस्टर प्रे और क्वाइकी। अलमेर के शहर की ओर हम आपको ले चलेंगे, जहां पर टोनी इसलिए प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। तो भैया टोनी, एंजॉय योर वीकेंड। खनित भाई साथ रहा अपन, एक हैपन अन हेर लकअप बैठक गाना हीर फन रोहित महाबली एंड मोतीमाला भोला सिंह एंड दिस वीकेंड दूसरो खान लेकर डांस। थैंक यू वेल टोनी, थैंक यू वेल खनित भाई, वीकेंड एंजॉय।

या रोहित महाबली और मोतीमाला भोला सिंह बैठक गान मेरे प्यारे सुनने वालों सेवा में एन अतुल के साथ लेकर वीकेंड में इस तरह के नगमाए स्विंग हील मालो द पन रोटरडम शहर में भी प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं एंड दैट इज बेनी यंकी डंकी वेल भैयो आपके ऐप के लिए फैन दच आफ्टर बेन बेनी यंकी जी खनित फाइन सैटरडे एंजॉय अपना वीकेंड भरपूर आप एंजॉय करें द टाइगर को हमने तैयार करके रखा है बेनी यंकी के नाम रोटरडम

0: धीरे धीरे आ जाना रे धीरे धीरे। द टाइगर विथ द इंडियन टेम्पटेशंस। अगले गीत मेरे प्यारे सुनो, सागर मलिक जी की आवाज में आप सुनेंगे, और ये गीत जेनी जेनी के नाम करेंगे। थैंक यू जेनी फॉर योर अपीयर। फाइन द चौक कफ्रस्टम बेंट यू आर उजाला रेडियो खनीत फन द सॉन्ग फन सागर मलिक एन फन यू आर फन सैटरडे नाइट फीवर एंड फॉरऑल ये सादरख यो वीकेंड। थैंक यू जेनी फॉर योर अपीयर।
1: जिगर में दर्द होंठों पे गीत लाया हूं तुम्हारी महफिल में

सागरमाला की आवाज मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल रोमांटिक सॉन्ग इनकी खूबसूरत आवाज में हमने आप तक पेश किया है हीरो ऑन यू आर सैटरडे नाइट फीवर में। मेरे प्यारे सुनने वालों, हम आपको ले चलेंगे ओवरसीज, ओशन के उस पार, न्यूयॉर्क सिटी, द बिग एप्पल में जो प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं। कविता जी घर से निकले हैं मोटर कार में बैठकर, और वो भी अपने काम पर सवार। तो कविता जी, थैंक यू, वेल थैंक यू आपके ऐप के लिए। प्लेसेंट ड्राइव एंड अ गुड डे एट वर्क। Very happy that you have tuned on UR and listening to my program Saturday Night Fever. Thanks for your app. I have a song here ready on the player for Kavita out New York City. The Big Apple, America. Shikhar Kumar. Mera dil bhi kitna pagal hai, ye pyar to tum hi se karta hai.

मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तुम ही से तो करते हैं, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता हूं। हमेशा ऐसा होता है। ये बेन स्टूर, अच्छा अलीन बेन अख्तर स्पीकर, ऐसे कहेंगे वो इसे कहेंगे और छम से वो सामने आ गया तो आपका जितनी बातचीत है सब बंद। मेरे प्यारे सुनो लो, खूबसूरत गीत शेखर कुमार ने फिर से गाए हैं, सजाए हैं, आप तक हमने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ पेश किया है। 10:45 का वक्त है इस वक्त स्टूडियो टाइट 11:15 और धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं 11 बजे की ओर। 11 बजे के बाद मेरे प्यारे सुनो वालों, 1 घंटे और विद ब्यूटिफुल सोल नंबर हियर ऑन यू आर, क्योंकि रात्रि में 12 बजे तक हमेशा की तरह आपका साथ हम देंगे। हम अमेरिका में जम के रहेंगे क्योंकि न्यूयॉर्क से हम चलेंगे टेक्सास की ओर, जो एक स्टेट है वहां, यहां पर डेलस भी है। वहां सुनीता और अजय अपने इति प्रेमियों के साथ प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं। तो सुनीता और अजय को हम कहेंगे हैव अ ब्लास्ट वीकेंड और बेहद खुशी है हम कि चून किए हुए हैं हियर ऑन यू आर। एक मोती माला का जो रिमिक्स है, उनके गाए हुए नगमाएं मोतीमाला जी का, रोहित और कविश मिलकर गीत गाएंगे प्रख्तख, और नाम करते हैं डारिन टेक्सास यूएस ऑफ ए, अजय और सुनीता के लिए और जितने भी लोग आप सभी के साथ है वहां। एंजॉय।

है नन्नन मेरे प्यारे सुनने वालों, ब्यूटीफुल रोमांटिक बेलतीनो ने गाए हैं और आए नन्नन विद फॉर्मेसी गुड वाइब्स हमारे प्रिय सुरिनाम देश का। मेरे प्यारे सुनने वालों, ठीक 11 मिनट गुजर चुके हैं, 11 बजकर 11 ओवर 11 एंड आवंट इज नॉट यंग, बिल्कुल जवान है क्योंकि वीकेंड है, शनिवार है, सभी भरपूर एंजॉय कर रहे हैं। एंड नैचुरली आल्स बखिंत रोन दिस टाइम, लेकिन हमारे हिस्से का प्रोग्राम का आखिरी घंटा है क्योंकि 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। और इस घंटे में हमेशा की तरह खान खानून में तालमाल बैलेट सोल्स, एक नाम और है हमारे लिस्ट पर और वो है रोहिणी कल्लू जी का अयत रोतदाम सीदाम, जो अपने निखतों के साथ आज मिलकर सुन रहे हैं। तो रोहिणी जी, एंजॉय योर वीकेंड, एंजॉय योर शनिवार, खसलख में चिनिख्त और एप करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टुकड़े सी फ्रॉम सूरीनाम, इनका एक मैथिली पेश करने जा रहा हूँ रोहिणी कल्लू जी के लिए। अर्थ श्री नाम रोतनाम

या ब्यूटीफुल मेरे प्यारे सनलो टू क्रेजी फ्रॉम सुरिनाम और ये था अश्विन गोपाल। दिस इज यू आर मेरे प्यारे सुनने वालों और प्रणाम से भी जुड़े हुए हैं रतनाम का भैया राजेश सिंह। तो भैया राजेश सिंह को हम कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपके ऐप के लिए, आप भरपूर एंजॉय करें अपना शनिवार अपना वीकेंड। यू आर और खास करके सैटरडे नाइट फीवर और ये प्रोग्राम में आपके लिए गीत चलाने जा रहा हूँ शिखर कुमार की आवाज में, एक किशोर कुमार का मेटली हमने तैयार करके रखा है। तो भैया राजेश सिंह जी आपके नाम करता हूँ।

शिखर कुमार मेरे प्यारे सुनोर, खूबसूरत लंबा चौड़ा किशोर कुमार का मेटली सेवा में जो पेश हुआ है हीरो निवार उजाला रेडियो। मेरे प्यारे सुनोर, 3 मिनट गुजर चुके हैं और वो भी 11:30 मतलब ये कि आखिरी आधे घंटे में जान पड़े हैं और 12 बजे तक आपका साथ हम देंगे। हम आप तक पेश करेंगे अब की बार एक नगमा, द यूनियर्स फ्रॉम सुरीनाम या सबस्तान फॉस मैनी मेर तत्वीत इकनी सीकर, लेकिन एक पुराने एल्बम से निकाल रहा हूं नगमा और पेश कर रहा हूं ये खुदा जाने।

नवीन सरजू मेरे प्यारे सुनो वालों, और वो भी मेडो फरमाती गुड वाइब्स। हमने क्या तैयार करके रखा है मैं देखूं तो जरा, वक्त इतनी कम है मेरे प्यारे सुनो वालों की दो नगमाएं और उन दो नगमाओं के बाद यहां स्टूडियो से हम रुखसत होंगे। डिफरमासी शो बैंड एलिगेंस पेश करने जा रहा हूं विनोद शायर भंडारी।

विनोद शार भुंडी, इनका गाया हुआ गीत चुमड़ू होंठ तेरे हमने आप तक पेश किया है। मेरे प्यारे सुनने वालों, अब वक्त आ गया है कि मैं आखिरी गीत पेश करूं और इस आखिरी गीत के बाद हम यहां स्टूडियो रतनाम से रुखसत होंगे। आज जितने लोग भी साथ दिए हैं, ऐप किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डंकीवाल शुक्रिया, करम मेहरबानी। उम्मीद और आशा करते हैं कि जिस तरह से प्रोग्राम हमने सजाए हैं, बनाए हैं, आप सभी ने भरपूर भी एंजॉय किए हैं, मजा लिए हैं, लुत्फ उठाई हैं। ये प्रोग्राम सैटरडे नाइट फीवर अगले हफ्ते जो इस महीने सितंबर का आखिरी शनिवार होंगे 26 तारीख, फिर हम पेश करेंगे लाइव एंड डायरेक्ट क्यू आर के स्टूडियो रतनाम से। लेकिन उससे पहले भी आप सभी से मिलेंगे बैक टू द फ्यूचर मादोन राखवेल में दिल की आवाज। मेरे प्यारे सुनो, रहा फूल तो फिर खिलेंगे और रहा ये खूबसूरत जिंदगी तो हम जरूर फिर मिलेंगे। सभी को रतन का प्यार भरा नमस्कार और खुदा हाफिज। टेक केयर और रिमेंबर आई लव यू ऑल।

सुन वालों, मैं हूं आमिर जयराम और ये है आपका उजाला रेडियो, वही हिंदी हिट रेडियो स्टेशन जहां प्यार, खुशी और मस्ती मिलता है।

0: हिंदुस्तान का तेरा तू?
1: हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।